आपसे व्हाट इज बेटर इज टू से दैट यू आर द बेस्ट नॉट बदर बदर कि आप कितने घटिया हैं आप कितने